कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक खुशी सत्य सोचे सोच न हो गई।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत काल वगैरह कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेर मार पाए असंत।

साला जी साला है नदियां आपके बाहर पर सोमना जान समुद्र साथ करता गिरी को नौनी अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुनना अंत

चेत गुपत लेख जानन, लेख लेख धर्म विचारे, गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले

नाली गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पायाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद

माया जिन उपाई, कर कर देखा है कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड़ा आखै सब कोए, के वड़ वड़ा डीठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

सारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला,

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़े आई, आख थके कीमत नहीं पाई।

मिलै तृपताशह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सा

बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आशा।

सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

आपे भुगता जी हों तो दबे न अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन।

तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आशा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेत।

नहीं पड़या। मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेऊ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जीव करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा,

थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ।

ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीन तनह पेव आप अपनी बुद है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी पुत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो तगा वहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर

तरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पौ जल बिखम असगाह गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोए ना जाए जे आवै तू दे आहे। सलोक महला पांजवा अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सत गुर से तीरतिया, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वात दे, जग मह उत्तम काटिया विरले के महला पंजवा।

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेको नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

साजनो तुम ईत मेरा ग्रह तेरा सब के हो। जन को प्रभ संगे असने हो, साजनो तुम ईत मेरा ग्रह तेरा सब के हो। करता तेरा सब के शह जिस दें सो पावे, दात है दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस दे, नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापै सेई। गरीब नवाज सचे पातशाह जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है जो आप गुरु दरबार विखे संध्या वेले दे दीवाना विच हाजरियां भर के लाहे लै रहे हो। सो आओ हुण समा हो रहा है अज दी अमृतमयी बाणी दी लड़ी वार कथा विचार दा। सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी जो कि अज तो श्री जपजी साहब जी की पावन बाणी की लड़ीवार कथा आरंभ कर रहे हैं जो 27 तरीक तक चलनी है। जिवें आप जी ने स्टेज तो बार बार दस्या जा रहा है कि पूरा महीना अमृतमयी बाणी श्री जपजी साहब जी दे कीर्तन विचार दे नाल आप सारिया संगतां जुड़ सकते हो। सो आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो जी, भुलां दी खिमा बख्श दिओ, पते दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

साई पीत हिंजी काटिया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरहो से वाडिया हो ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा एहो महिंजा आसरा सजन तू है सैन तू मैं तुझे उपर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तूने माणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखाल एहा पाई मूंदा तड़ी नित हिरदे रखा संभाल पाव जुलाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर थीवे कृपाल हर की वडियाई हो आख ना सक हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी

सगल समग्री तुम रहे सूतर धारी, तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित तुम्हें। नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस जिठे शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरया कर नौन त्यावे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी। सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान सब जाते चाली मुक्तिया। हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई ते गवाई ते के नटकीता। तिना प्यारिया सत्यारिया की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते। बंद बंद कटाए को प्रिया लोहाया चरखड़िया ते चढ़े। आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुरबानियां कीते। धर्म ने हारिया सिक्खी के सस्व सत्संग निभाई। तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी किरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चिताबे चितावन का सदका सर्व सुख है जह जय खालसा जी। साहेब तहतर शरियाज देखते फतेह बिरध की पाए पंथ की जी। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विशा दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन शना चुकिया झंडे बंगे। जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत कर अखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नु विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी ने बख्शो। हिन माण्यो के मान ताण्यो के ताण न्योटिया की ओर सच्चे पिता वाहगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। आप जी के चरणा चरदास बेनती महाराज जी। आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना आरती शब्द कीर्तन अज जपजी साहब के पाठ की विचार की आरंभता हो। उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन है महाराज जी। समुची सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचार करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या हूं बेअंत फुला बख्श देनिया जी। अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बाद उदम बख्शिश करना जी। बाणी का अभाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसौला आईया संगतां की हारी दर प्रवान करनी। सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनिया। सभना नूं दरम करन नाम दान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना। चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी। दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी। सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी। बेन संगतां दूर दराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हुण जाप सरवण करद्यां आप जी दा धन्नवाद करद्यां बेनत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी। सारी संगत की हाजिर दर प्रवान करनी सुपना की माया सफली करनी किरत कमाइया भी बरकता पाया श्रद्धा भावना संपूर्ण करनिया आप जी के दर घर के सेवक अवजोत सिंह अर्श नूर कौर जी परिवार की सुख शांति वास्ते अरदास बेनती करते हैं। कृपा करनी सेवक परिवार की महाराज जी अरदास बेनती प्रवान करनी परिवार घर में सुख शांति बख्शिश करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी दर घर के सेवक हरजीत गरेवाल वाहगुरु जी का शुकराना करद्या गुरु घर वास्ते एक सौ एक डालर माया भेटा करते हैं। कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार दी श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी। सिख पंथ में एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी। खालसा पंथ नूं चढ़ती कला बख्शिश करनी जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता हुई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतां नूं निहाल करो जी। सही गुरम प्यारे मेरे नाल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चिता वे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुहरा आग्या पही अकाल की तवी चलायो।

चारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहाओ नित नित जीवड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे धन कीमत ना पवै तिसदाते कमन समार संबद साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असीसड़िया जो हो वै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुंचा सदरे नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन रागा सा महला पहला शिय घर शिय गुर शेप देस गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे जसियां कड़ियां पहरा तिथी बारी माहो होआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेस रागतना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती हो।

पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है रहाव। सागत हर रस साधना जानिया, तने अंतर हों मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलह चुबे दुख पाव है, जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी

गुर ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सत गुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहि मिटावों।

विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आपा प्रभ सोई, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबू कै संग, बूझे दे।

आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब कह साथ, आपकी नुवापन विस्तार सब कछ उसका करने हार। उसते भिन कहो किच हुए, थान तनंतर एक कैसे हुए, अपने चलताव करने हार, गौतव करे रंग आपार, मन में अमन अपने माहे, नान कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किन्ने वख्यानी, सच सच सत सब किन्ना कूड़, मधे किन्ने बिरले छीना, भला भला भला तेरा रूपा सुंदर पार नूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बकियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत।

बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखै न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तिस नामै जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच न जाए संत दुखी काथा को नाहि नानक संत भावै तौ पीगत पाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक खिन टिक न पाई संत का निंदक माह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुख यार दीन संत के निंदक को सर्वरो संत के निंदक को सदा बिजो संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावै तो उसका पी हुए मुख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत भावै तां लै मिलाए संत का दुखी अद विच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहि अपन बीजा पे ही काहे संत के दुखी कबर न राखन हार नानक संत भावै तां लै उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यो भाव किंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यो बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म तेरै संत का दुखी सद मिथ्या कैद किरत निंदका तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गै मिलै सजाय संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी न मरै न जीवाइय संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उचलै निराशा संत का दुख न तृष्टै कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पै गिरत न मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए सब घट दिस क्यों करने हार सदा सदा तिस को नमस्कार प्रभु की उस्तुति करो दिन रात तिसै त्याहु सास ग्रास सब कछु वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खिलाप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करै तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन शेष लोग तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आसहर मन रखो नानक दुख भरम पो जाय अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे अघाय बहुर न तृष्णा लागे आय मारे राखे को आप मानु कै किछ नाही हाथ तिसका हुकुम सुख होए तिसका नाम रखंठ पुरोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघ्न न लागे कोए उस्तद मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै भाव जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करै विचार चेतनवंत गणी संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सूझी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिनै निरंजन जानिया
गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्योहरजन रहत, अंधन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटिय जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसन लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किच जन्मे न किच मरे, अपन चलताप ही करे, आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अनिक जुगत रच थाप थाप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण धारे हो ब्रह्मांड, अलक पे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक

लाहे तीसुर कना पाइया नदियां अतः वाह पव है सुमुंद ना जानिया है सुमुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन होना भी सुरा है अंत ना सिसती कहण ना अंत अंत ना करण देण ना अंत अंत ना वेखण सुनण ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै पीता आकार अंत ना जापै परावार अंत कारण केते बेल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड़ा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ केवड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता करम लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए केते मंगा जोद अपार केते अगणत नहीं विचार केते खप तुट है वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केतिया दुख भूख साध मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के ही के जिसनो बख से सिफत साला नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लाए जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे ले बलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपीता है गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सक है केई के जेवड़ पावे तेवड़ होए ना।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਸ਼ਾਂਦਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋ ਜਿਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵਾ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਇਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਇਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਤੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੁਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਇਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤਹੇ ਹੈ ਅਪਹੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤਿਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਿਰਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸ੍ਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਸ਼ੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ
नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम गृदे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद करता अधो उर्द अर्धं अगं ओग हरता परं परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशीति अपहिति अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तस्तुतामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपहे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपहेस हैं पूजांग प्रयात शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग आगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांतो अप्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पूर्ण काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विसा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तताम हो नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जिह बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानहि कह जेब तात मात न जात जाकर जानम मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बिखह जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थापेओ सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अरवेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहौ साहान साहौ राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान
इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुन गन प्रणाम निरपह निकाम आत दूत प्रचंड मेथ गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंड अंड बाडय चाचरी छंद तुआ प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतिशय आदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आशिज दिसै के अभिज भिसै के अगंज करमै के अभंज परमै के अभिज लोकै के अदित सोकै के अवतूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अवर्ण है के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपहो अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अहबुल गुना है के साहान सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीन नाय के सर्वत्र लीन नाय के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालाय के सर्वत्र पालाय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सुखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पान्नाय के सर्वत्र मान्नाय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलिमे के परमं फहिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलामे सलीखत मोदामे गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसुताय बलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमी जुल तमाम है रजू अल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे कृपुगत स्वरूप है अशिज है अशूत है किनर्कं प्रणाश है कृत्युल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंद है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेक है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग तर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे
अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न पात न मात न जात न पात न साकं सरी कहें अमितो अमीक हैं। सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज कर रहीम हैं के रोजी देहंत हैं के राज कर रहंद हैं क्रीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनी मुल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब की राह हैं के नरकंग प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेसुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनल जमा हैं अमीकुल इमा हैं क्रीमुल कमाल हैं के जोरत जमाल हैं के अचलं प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शांतत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंजो हर नर प्रपंज अनुगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड देश वेश अपंड जल थल महंत देश वेश बेअंत अनुभव अनास त्रेत तार तुरास अजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरु बर अकाल कर कर प्रणाम चेत चरण नाम अन छेज गात आज जिना बात अन झंज गात अन रंज बात अन ठट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर भूल मना शांत तुअ प्रसाद करुणालय है अरिकाल्य है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खालखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायिक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायिक है भव भंजन है अरिगंजन है रेप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात शंग नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तं अततं स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अघा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पूजंग प्रयात शंग नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
नृकामं बेभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सुतर्मं बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणाशी क्रीमल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप फली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबय सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर आरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा है सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बह पुंज खापेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबाय अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कूट स्नान गजादिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फासे जम फास परेंगे जे नार श्री पत के प्रस है पाग ते नार फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बात ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गायो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तहायो कूर किरिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पाश।

भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे ओ बाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो। आप हाथ दय मुहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिया। सब बैरन को आज संग्रिया, पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याओ। जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिया है। चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे रख नहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धारत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पायो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहावा मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न है आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मोह हरे हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खाड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दाय लेहो उबारी। सर्ब ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई।
कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता, किल बेखो सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुज जब पए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत् काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसाए व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहि सुरस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहै, हो जो जाति एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरथ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौश

गहे तुहारु द्वार, बाहे गहे की लाज असु गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्द ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

मरण मनहो वेसारया। वेदा में नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर हज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन साच तजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। जियो हो निर्मल बारहो निर्मल बारहो ता निर्मल जियो हो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले। जेकु सिख गुरु से ती सन मुख होवै होवै ता सन मुख सिख कोई जियो हो रहै गुरु नाले। गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मै संभाले। आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोए। कहे नानक सुन हो संतो हो सो सिख सन मुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होरथ है कोई पुछ हो बेबेकियां जाए। अनेक जुनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी। बाणी ता गाव गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर करम होवै हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारिंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाज जहो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहे आ कछु न जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी। कहे नानक सतगुरु बाज जहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द

भक्तन को मीठा गौरपुरे गौरतेरारे नु सिहारी ए गुरु ने मेनू पता ही नहीं सीगा इस नाम दे नाल जोड़िया हुण नाम दा निदान नाम दे खजाने विच लगन करके सुख भी है ते मेनू मिठा भी है। इन्हें अंदरों कड़त्तन कटती कि बिह कट दिती हुण किसे कोले रोस नहीं करता कि बेइंसाफी होएगी। हुण उहनू यह ज्ञान हो गया कि तोलण वाला कौन है, तोलिया जाण वाला आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तलाया। दुनिया के कंडिया दे विच हेरा फेरी हुंदी है, दुनिया की तकड़ी दे विच पासकू हुंदा है, दुनिया दे विच बेइंसाफी है, इत्थे जज विकदे आ, कातल विकदा है, कतल विकदा है, वकील विकदा है, गवाह विकदा है, लेकिन उत्थे जदों उहदे नाल लग जांदा है उदों पासकू खत्म, शंके खत्म। उदू कहिंदा ओ वाहिगुरु अकाल पुरख ओही कंडा है, ओही तकड़ी है, तोलनहारा भी ओ है, फिर कोई शंका ही नहीं हैगा निश्चिंत, सारे पासे ओ वाहिगुरु अकाल पुरख ही तोलन वाला ओ है। फिर कहिंदा मैनूं चिंता नहीं हैगी क्योंकि शाहूकार ओ आप है, वणजारा भी ओ आप है, आपे साहो आपे वणजारा आपे वणज कराया। हुण जिहड़ा काम इत्थों करा रहा नूं ओह आप करा रहा है, वह अपने दर ते आप करा रहा है, अपने हुक्म दे विच करा रहा है, उहदे हुक्म चलण करके सोखे। उहदा हुक्म की है कि इस अवस्था नूं पाउण वास्ते सत संगत कैसी जाणीए, जिथे एको नाम वखाणीए, एको नाम हुक्म है सतगुर दिया बुझाए जी। इसे फुरमान की अखीरली पंक्ति इसनूं स्पष्ट करदी है, ज्यों आप चलाए त्यों चलिए प्यारे। असीं कई वारी जिहड़े अपने मर्जी नाल काम करदे हुंदे ना, इहदे अर्थ इउं ला दिंदे नी, जिस तरह ओह वाहिगुरु पाउंदा है तूं चाहुंदा सारे पासे ओह ही आवे, फिर ओहदे हुक्म विच चल। जिवें जपजी साहिब जी फरमाया है कि ओह वाहिगुरु अकाल पुरख जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवे फरमान। हे मेरे मन, इस शरीर नूं उस पासे नूं चलाउणा है जिवें उस वाहिगुरु नूं पौंदा है, जिवें ओहदा हुक्म है। ओहदे हुक्म तों बाहर नहीं जाना। ओहदे हुक्म च होया सो साहिब सो सेवक तेहा जिस भाणा मन वसाई, सेवक उस मालक वर्गा हो जाए, उस मालक नूं इत्थे कोई बगाना नजर नहीं आउंदा। दुनिया च किसे ने कहा सी काफर है, दूजे ने कहा सी मलेश है, पर यह आवाज गुरु नानक दे घर ने दित्ती सी,
एक पिता एक

हर नाल रहो तू मन मेरे, अंगीकार ओह करे तेरा, सबन गला समरथ स्वामी, कह नानक मन मेरे।

सुनते पुनीत कहते पवित्र बिन वणत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ओंकार सब सृष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पान

बिन नावै सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावै वधै विकारा। नाम न सेवै क्यों सुख पाइयै, बिन नावै दुख पाए दा। आप करे तै आप कराए, गुर प्रसादी किसे बुझाए। गुरमुख होवै से बंधन तोड़ै, मुक्ति कै घर पाए दा। गणत गणै सो जलै संसारा, सहसा मूल न चुकै विकारा। गुरमुख होवै सो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा। जे सच देता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सच नाम सा लाहे रंग राता, गुर किरपा ते सुख पाए दा। जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा। हर कै नाम मन तन मन शीतल हुआ, सहजे सहज समाए दा। अंत

नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख निहा। नाम सलाही सदा सुख पाया, निज घर वासा पाएदा। सब को वणज करे वापारा, विण नावै सब टूटा संसारा। नागु आया नागु जासी, विण नावै दुख पाएदा। जिसनु नाम दे सो पाए, गुर कै शब्द हर मन वसाए। गुर किरपा ते नाम वसिया घट अंतर, नामो नाम ते आएदा। नावै नू लुचै जिती सब आई, नाउ तिना मिलै तुर पुरब कमाई। जिनी नाउ पाया सीवट भागी, गुर कै शब्द मिलाएदा। काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा। सच्चा न्याउ सच्चु वापारा, निहचल वासा पाएदा। अंतर घर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरलै किने थान पाया। इत साथ निभै सा लाहे सच्चे, हर सच्चा मन वसाएदा। मेरै करतै इक बणत बनाई, इस देही विच सब वत पाई। नानक नाम वणजह रंग राते, गुरमुख को नाम पाएदा। मारू महला तीजा, काया कंचन शब्द विचार।

काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाए दा, बिन भागा गुर से

काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख ले वै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाए दा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता।

आकार आकार उपाया माया मोह हुक्म बनाया आपे खेल करे सब करता सुन साचा मन वसाएदा माया माई त्रै गुण प्रसूत जमाया चारे वेद ब्रह्मे नु फरमाया वरे महावार।

राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पायदा, वेद पढ़े अनदिन वाद सुमाले, नाम न चेतै बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम भुलाहिंदा, गुरमुख एक स्यों लवलाए, त्रिविद मनसा मन है समाए, साचै शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाहिंदा।

मैं लाहा पाया। तेरे गुण कहा मैं कहन न जाई, अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता, गुण मह गुणी समाया। इस जग में मोह है पासारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। धंधे धावत जन्म गवाया, बिन नावै दुख पाया। कर्म हुवै ता सतगुर पाए, हौमै मैल शब्द जलाए।

कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम मूलक अगमा पारा, ना को हुआ तोलनहारा। आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवै करह अरदास, जो सेवक सेवै करे अरदास। तू आपे मेल बहालह पास, सबना जिया का सुखदाता। पूरै कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावै। इह मन निर्मल जे हर गुण गावै, इस भिख मह अमृत प्राप्त हुवै। हर जीव मेरे पाया, जिसनु बुझाई सुई बुझै। हर गुण गावै अंदर सूझै, हौ मैं मेरा ठाकर हाए। सहजे ही सच पाया, बिन कर्मा होर फिरै कनेरी। मर मर जमै चुकै ना फेरी, बिख का राता बिख कमावै। सुख न कब हूं पाया, बहुते भेख करे भेख धारी। बिन शब्द हौ मैं किने न मारी, जीवत मरै ता मुक्त पाए। सच्चै नाए समाया।

पूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए जम का जीवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हम मैं जाए समाया आवन जाने पर जिवगोई बिन सतगुर थिर कोए न होई अंतर जोत शब्द सुख वसिया ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित वह बेकारा माया मुख का इहु पसारा सतगुर सेवेता मुक्त हुवै पंच दूत वस आया बाज गुरु है मुह गुबारा फिर डुब्बै वारो वारा सतगुर भेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया

अमृत चुग है गुर शब्द निवासा। उडह न मूले ना आवह न जाही निज करवासा पाया। काया शुद्ध है शब्द विचार है बहुठ गोरी भरम निवार है। आपे कृपा करे सुखदाता आपे मेल मिलाया। साध ही नेड़ दूर ना जान हूं गुर कै शब्द नजीक पछाण हूं। बिकसै कमल किरण पर गासै प्रगट कर देखाया। आपे करता सच्चा सोई आपे मार जीवाले अवर न कोई। नानक नाम मिले वड्याई आप गवाई सुख पाया। मारू सोलहे महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्चा आप सुवार नहारा। अवर न सूझ

इनको करते तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजे नाही, गुर चरणी चित लाई हे, जिस भावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले, आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई हे, ज्ञान रतन मन प्रगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया, एह वड्याई गुरते पाई, सतगुर कौ सद बल जाई हे, प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुरु रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अत भारी, कर्म मिले सुख पाई हे, गुरमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा लोए, नामे नाम रते सुख पाया, नाम रहा लिवलाई हे, गुरमुख नाम प्राप्त हुवे, सहजे जागे सहजे सोवे, गुरमुख

आख वखाणी हर हर करत सदा मन भिक्षै हर चरणी मन लाई हे। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही उह दयाल कृपा कर हर जियो सतगुर की सेवा लाई हे। जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता सर्वे रव रहया सुखदाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत सुमाई हे।

मूर्ख स्यों नहलूज पराणी, हर जपिय पद निर्वाणी हे। ना कर चिंत चिंता है करते, हर देव जल थल जनता सब तै। अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखाणी हे। ना कर आस नीत सुत पाई, ना कर आस किसे सहा व्यवहार की पराई। बिन हर नावे को बेली नाही, हर जपिए सारंग पाणी हे। अन दिन नाम जपो बनवारी, सब आसा मनसा पूरे थारी। जन नानक नाम जपो भव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी हे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया।

गुरु कै शब्द भरम भौ भागै, विचे ग्रह सदा रहे उदासी, जो कमल रहे विच पानी हे, विच होमै सेवा थाए न पाए।

आखा स्वामी तू सर्व जिया का अंतर जामी हो मांगू दान तुझे पह करते हर अनदिन नाम वखाणी हे किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का मैं हर मिनट एक धर

वड्डी जिस वड्याई हे सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब निवाज करे प्रभ मीरे गर्भ निवारण सर्व सुधारण किछ कीमत कही न जाई हे सो पतवंता सो तनवंता जिस मन वसिया हर भगवंता माता पिता सुत

निश्चो है तरना, मन बच कर्म अराधे करता, किसना ही कदे सजाई है, गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन न पव्या।

अंगीकार किया प्रभु अपने जग में शुभ सुहाई हे। जय जय कार जपो जगदीश है बल बल जाई प्रभु अपने ईसे तिस बिन दूजा अवर न दिसे एका जगत सुभाई हे। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवै जन तेरे एक अंकार समाई हे। भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई रे। भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण

निष्कपट निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वढ़ कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े यार करे फिराए संत मलेच माल पाप खाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिकार सदा सदा मत निरंकार संत नाम राम राम।

अब जाए ऐसा ही खला है नदियाँ से बाहर सोमना जान समुद्र सा करता गिरी कुल नामी अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुना।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार जाए अशांत मलेर माल पाए अशांत निंदक जाए।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वह संख पापी पाप असंख कूड़े असंख मलेच मल भक् असंख निंदक कर नानक नीच कह मर न जाना एक जो तुम भाव है सही करेगा सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शरणम गुरु प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य

नागर सोए आपे आप निरंजन सोए किंते रतन पाया मां नानक गावी है गुणी दा गावी है सुनिए मन रखिए।

पहर कले कर जो जी क्या गंगा के ना सब लाल क्या मुड़ी सब एवले काल के गाने होए कितना तान सुनाले और होंगे कितना बताओ एक बताओ।

संख सताओ संख ग्रंथ निकले आप संख लोग मन रहे संख पदक ज्ञान विचार संख सती संख दाता संख सूर मोह मत्ता।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवट हत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूर्या संत मलेर मल पाए असंत

0: कैसे कैसे रत्न सुनूंगा,
1: कितनिया पानी कितनिया पानी कैसे पास रहता,
0: कितनिया सुनती नानक अंत न अंत,
2: ज्ञान अंत में ज्ञान प्रचंड।

तप निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय अशांत पापी पाप अशांत मूरे आर करे फिर अशांत मलेच माल पाप खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जामा के जो तुम पावे सही परिकार सदा सदा मत मिलन संत नाम संत नाम राम राम।

आपे पीर आवे खा पीर तप ते अंतरा देखो पावे दिलनामा सुनया मनया मजीता पाओ अंतर कर तीर मन लाओ सब तेरे सुनाई कोई बिन दुखी ते मन होए स्वस्थ आस पाणी ब्रह्मा सत सुहाग सलाम कवन सुनेला भगत कवन कवन सिद्ध कवन आप कवन सृष्टि मां वेद पाइया।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई।

अशंत मूर्ख अंध घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वाए संत पापी पाप अशंत मूड़ यार फिराए संत मलेश मल पाए अशंत निंदक करे पास नानक नीच कह मर न जावा के जो कुछ पावे सही फल कर सदा सदा संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें।

अब जाए साला ही साला है नदियां से बाहर पांचों ना जान समुद्र सा अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुना।

पाताल इस विच धरती थाप थी धर्म साथ इस विच ही जगत के रंग करके नया अनेक करमी करमी होए विचार का अब इथे सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे कच्छ पाई उथे पाए नानक गया धर्म खंड का

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

अशंखं मूर्खं दुःखोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख काल वड हत्या कमाए अशंख पापी पाप अशंख मूर्या करे सुधाए अशंख मलेच माल पाखाए अशंख

अथ आकाणी ब्रह्मा अश्वान्तरम् कमण सुरेन्द्र भगत कमण कमण क्षेत्र कमण कमण सुरस्ती माँ

निष्काम निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार करे फिराए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कह मारे न जाना के जो तुम पावे सही परिकार।

सत्कृत निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

संकरताओ संकरंत निवेश पाप संक जोग मन कहो संक पदक ज्ञान विचार संक सभी का संकाता संक

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वहां शंख पापी पाप अशंख मूड़े आर करे फिर अशंख मलेच मल पाए अशंख निंदक करे नानक नीच कह मारे न जा जो सुख पावे सही करी कर।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर और राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूरे आर करे फिर अशांत मलेच मल पाए अशांत निंदक करे पास नानक नीच कहे विचार मारे न जाना एक जो तुम पाव है सही परिकार सदा सुनाम संत नाम संत नाम गम गम संत दो असंत कहें सिर्फ

का पुरुष निर्भय निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वड़ कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आए फिराए अशांत मलेर मार पाक खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जाना ते जो सुख पावे सही तरीका से सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत लोग संत कहें सिर्फ।

पांच दोख अर अहं रोग ए संते सगल दूर कीना राव बंधन तोर शोर बिख्या से गुरु को साधु मेरा ही रह दीना रूप अनूप मोरो कचना बिचार्यो प्रेम गहो मोहे हर रंग पीना पेख्यो लालन पाठ बीज खोए अनस चिता हर के पतीना तिसी को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकरो तिसी को तीना पेख्यो लालन पाठ बीज खोए अनस चिता हर के पतीना तिसी को गृह सोई प्रभ नानक।

को ठाकुर तिथि को दीना। वाहे जी का खालसा वाहे जी की फतेह। ओंकार सतनाम सत्ता पुरख निरभउ निर्वैर काल मूर्त योनि सैभं प्रसाद जप आदि सच जुग।

सुनमानम त्रि प्यारिया मिलवेला है ये जब लग जोबन सास है तब लग उतन देहे

गुरमुख नाम सलाहिया होमे निवरी पाहे रहाओ सुन सुन गंडन गंडिया लिख पर बुझे पार तृष्णा है नित अगली होमे रोग विकार ओह बेप्रवाह अचोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्याण पजे करी लक्ष्य प्रीत मिलाप बिन संगत संगत साधना तरक्या बिन नावे दुख संताप हर जब जीरे चुटिया गुरमुख चीने आप तन मन गुर पह बेचिया मन दिया सिर नाल सिर पवन खोज चंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुरु मेल मिलाया नान सो प्रभ नाल श्री राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रत पालही लेखे साथ ग्रास अंतर गुरमुख तू बस है जो पावे त्यो निर्जास जीरे राम जप मन मान अंतर लागी जल बुझी माया गुरमुख ज्ञान रहाओ अंतर की गत जानिया गुर मिलिए संत उतार मोया चित कर जाइया तित जीव दिया मर मार आनहद शब्द सुहावने पाइये गुर विचार आनहद बाणी पाइया तै हो मैं हुए विनाश सतगुरु सेव है अपना हो सद कुरबाने सास खर दरगह पहनाइया मुखर नाम निवास जै देखा तैरव रहे शिव सती का मेल त्रिगुण बंदी देहरी जो है जग सो खेल बेयोगी दुख बिछड़े मन मुकल है ना मेल मन बैरागी कर वसै सच बैरता होए ज्ञान महारत भूग वै बाहर भूख ना होए नानक मन मार मिल पी नानक मन मार मिल पी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला यो मनो

साधु सतगुरु जी मिले ता पाइए गुणी निदान मान रे हो मैं सुर्ग मान। हर गुर सरबर सेव तू पावे दरगह मान राव राव नाव जब दिन से रात गुरमुख हर तन जान सब सुख हरत कोकणे संत सभा मिल ज्ञान नेत अहनत हर प्रभ सेव्या सतगुरु दिया नाम कुकर कूड कमाई है गुर निंदा पचे पचान पर में पूला दुखणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख न पाई है गुरमुख शुभ सुभान ऐसे संज पटाई है सच लिख परवान हर सज्जन गुरु से बदा गुर करनी प्रधान नानक नाम ना विसरै कर्म सचै निशान श्री राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरै रोग बड़ा मन माहे क्यों दरगह पद पाई है जा हर न बसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मान रे है न सार गुण सार जिन खिन पल ना विसरै तेजन विरले संसार रहाओ ज्योति ज्योत मिलाई है सुरसी सुर संजोग ईसा हमें गत गए नाही सहसा सोग गुरमुख जिस हर मन वस है इस मेले गुर संजोग काया कामन जे करी उगे भोगण हार तिस्यो न्यो न की जई जो दी से चलन हार गुरमुख रवे सोहागणी प्रभ प्रभ सेज पतार चारी अग निर्वार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासया अमृत परया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगह जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच सच कदी लाई है तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सत्संगत सतगुरु पाई है एन सब सलाहे रहाओ सच बकर तन रास लै पाइए गुर प्रगास जो अगन मरे जल पाया जो सिरसना दासन दास जम जंधार न लग गई जो भौजल करे तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मिलिया सच्चे सच समाए मन में मानक लाल नाम रतन मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच बगर तन नाम है घट कर गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परमे पाए न बिजवै ये पवित संतर देश अंतर मैल न उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेश और किते भक्त न हो गई बिन सतगुरु के उपदेश मान रे गुरमुख अग्नि निवार गुर का कहया मन वसै हमें तृष्णा मार रहाओ मन माल मानक निर्मूल है राम नाम पद पाए फिर सत्संग हर पाई है गुरमुख हर लिबलाए आप गया सुख पाया बिल सलले सलल समाए जिन हर हर नाम ना चेत्यो सो अवगुण आवे जाए जिस सतगुर पुरख ना पेट्यो सो पौजल पचे पचाए यो मानक जीव निर्मोल है यो कौटी बदले जाए जिना सतगुर रस मिले
ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪੌਜਲ ਲੰਘਿਆ ਦਰਖੈ ਪਤ ਪਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੂਜਲੇ ਸੁਨ ਉਪਜੈ ਸਭ ਨੀਸਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰੇ ਹੋ ਬਖਰ ਲੇਹੋ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਬਸ ਬਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਉ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਜਸ ਬਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸੌ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ ਰਹਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਸਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਬਣਜ ਮਣ ਜਿਆ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ ਪਾਹੀ ਫਾਸੇ ਮਿਰਗ ਜੋ ਦੂਕਣੋ ਨਿਤ ਰੋਏ ਖੋਟੇ ਪੋਸੇ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਾ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਹੈ ਖੋਟ ਨਾ ਸੀ ਚਿਤ ਕੋਏ ਖੋਟੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ ਆਏ ਗਿਆ ਪਤ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ ਸਲਾਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਪਰਮ ਸਿਨਾਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ ਸਲਾਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਪਰਮ ਸਿਨਾਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ ਮਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਤਨ ਜੋਬਨ ਹਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੜੀ ਏ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪੱਪਣ ਕਿਹੜੇ ਪਤ ਜੋ ਢਾਲ ਟੁਲ ਜਮਣ ਹਾਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੌ ਫੁੱਲਾ ਦਿਨ ਸੁਰੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸੁਰੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਰਹੋ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ

एक कह कहया क्या हुए आपी सज पावे सच अंधा कच्चा कच्चन कच राओ जाके रोक बिर आराओ यह सतिया सिन नाओ फूल पाओ फल लिखा पाए आप भी आप ही खाए कच्ची कंध कच्चा बिचराज मस्त लूनी पिका साध नानक आने आवे रास बिन नावे नाही सावास श्री राग महला पहला कर पांजवा अचल जाई ना छले है काओ कटारा कर सके जो साहेब राके सूर है इस लोभी का जीव टल पल बिन सेल सेल दीवा क्यों जले रहाऊ कोसी पुराण कमाई है बहु बट्टी इस तन पाई है सच बूझण आन जलाई है एहो तेल दीवा क्यों जले कर चानन साहेब सो मिले रहाओ इत सन लागे बाणिया सुख होवे सेव कुमारिया सब दुनिया आवन जानिया दुनिया से कमाइया तब दरगाह बैठन पाइया को नानक बाहर लुड़ाइया श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनु दे बुझाए मन चिंदिया बर पावना जो इच्छे सो फल पाए नाव ते आइए नाव मंगिए नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाग तिक जाए मन मेरे हर रस चाग तिक जाए जिन्हें गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ जिन्हें सतगुरु सेव्या इन्हीं पाया नाम निदान अंतर हर सिरव रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल पर गातिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुरु सेवन अपना विरले संसार मैं मफता मार के हर राख्या पुरतार और तिनके बलहारण है जिना नामे लगा प्यार सही सुखी सौ जुगी जिना नाम उकुट अपार मिले ना पाइये मोह प्यास हड़ तिथि मन रव रहा काली माए उदास जिना हर का साध आया पाइये चुके जिना हरस हर का साध आया और तिन बलहारे चास नाक नदरी पाई है सत नाम गुण तास श्री राग महला तीजा और पेकर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का मैल ना पावई मर बिस्ता माहे समाए मन रे ग्रेही मह माहे उदास सत्सन करनी सू करै गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर के साध मन जीतया गात मुक्त करे हमें अपाए हर का नाम त्याई है सत्संग मेल मिलाए ये लक्ष स्त्रिया पू कर है नवखंड राज कमाहे मिन सतगुरु सुख न पावई फिर जो नी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चितलाए बिना पिछे रिद सिद्ध करे ओना तिल ना समाए जो प्रभु पावे सो सी है अपना करना जाए जन्नान जीवे है नाम ले हर देव से सुभाए राग महला तीजा जिसकी सी जिसकी की किसी की सरकार है किसी का सब कोए गुरमुख कार कमावनी सच कर प्रगट होए आंसर जिसके सच बस है सच्ची सच्ची सोए सच मिले सोना बिछड़ा है निष्करवासा होए मेरे राम में हर बिन अवरना कोए सतगुरु सच प्रभ निर्मला सब मिलावा होए रहो
सद मिले सो मिल रहे, जिसनो आपे लय मिलाए, दूजे पाए को ना मिले, फिर आवे जाए, सब में एक बरसदा इको रह समाए, जिसनो आप दयाल हुए तो गुरमुख नाम समाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की बात करे विचार, मत बुद्ध पवी ना बुझी अंतर लोक विकार, लाख चौरासी परम दे परम ब्रह्म होए खुआर, गुरु लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार, सतगुरु की सेवा गाखड़ी फिर दीजे आप भगवाए, सद मिले ता हर मिले सेवा पवे सब थाए, पार्थ पार्थ पार्थ होए जोशी जोत समाए, जनको पूर्व लिखिया सतगुरु मिलिया आए, मन भुखा भुखा मत करै मासु करे पुकार, लाख चौरासी जन श्री सबसे दे आधार, निरपोष

विराग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए अंत नाम त्याई है सहजे नाम समाये अंदर रचे हर सच सो रसना हर गुण गाए पाई रे जग दुखिया दूजे पाए कुर्सर नाई सुख लहे अंदर नाम से आए राव साची महल ला गई मन निर्मल हर ते आए गुरमुख सब पछाणिया हरे अमृत नाम समाए गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाए मनमुख मैले मल परे हमें तृष्णा बेकार शब्दी महल नाई उतरा है मर जमे हुए कुआर सासुर बाजी पच रहे ना उर बार ना पार गुरमुख जब तब संजमी हर के नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार नानक नाम त्याई है सपना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मानस मोहे पिया पिया बैराग उदासी ना होए सावधा कीने सदा जोखार दरगा पद कोए सावधना चीने सदा दुख हर दरगा पद कोए और मैं गुरमुख कोई है नाम रते सुख होए मेरे मानो है नित पूर रही नित आशा सतगुरु से मोह पर जलाय कारी माहे उदासा रहो गुरमुख कर्म कमावे विकसै हर बराग आनंदो है नित पद करे दिन राती ओम मैं मार निचेंद बड़े पाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम बसाए अंतर लागना साम मूले बेचो आप गवाए नाम दान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया अगाए जिनकने पाया सत्संगति पूरे पाग बैराग मन भरे न जाने सतगुरु हमें अंदर लाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए पिन पै के ही लाग श्री राग महला तीजा कारी सौदा पाई है अंतर सब पास कोए खिन खिन नाम समा लिया है गुरमुख पावे कोए नाम निदान अखुट है भागी प्राप्त होए मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकारो हर जियो सदा त्याय तू गुरमुख एक ओंकार रहो गुरमुख के मुख उजले गुरु शब्दी विचार हाथ पल सुख पाए दे जप जब हृदय मुरार घाड़ी बिच महल पाया गुरु शब्दी विचार सतगुर से जो मोह फिर है मते तिन काले अंधन दुख कमावणे अंधन दुख कमाव दे इस जोहे जम जाले सुपने सुख न देखनी बो चिंता पर जाले सबना का दाता एक है आपे बख करे कहना कुछ न जावई इस पावे दे नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए श्री राग महला तीजा सच्चा साहेब सीवी है सच बड़ियाई दे गुर प्रसादी मन वसै हमें दूर करे ये मन ताप तार है या आपे नद करे पाई रे गुरमुख हर नाम से आए नाम दान सद मन वसै महली पावे ताओ राओ मन मुख मन तन हंध है नो ठौर ना ठाओ बो जूनी पौधा फिर जो संजय कर काओ गुरमती कर चानना साध मिले हर नाओ त्रैगुण बिके आंध है माया मोह गुबारो लोभी अन को सेव दे पर बीता करे मैं पुकारो बिके अंतर पच मोए ना उर बार ना पारो माया मोहि बिसारिया जग पिता प्रात पालो बाजो गुरु अचेत है सब दी जमकारो नानक गुरमत उभरे सच्चा नाम संभालो श्री राग महला तीजा त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए
कर कृपा मिलायन, हर नाम बचा मन आई, उसे जन के पुन है तिन सत्संग मिलाए। पाई रे गुरमत साच सरहाओ, साचो साच कमावना, साचे शब्द मिलाओ राहो, जिनी ना पिछाड़िया तिन बिटू बल जाओ। आप झूठ चरनी लगा चला तिन के पाए, लाहा हर हर ना मिले सहजे नाम समाए। बिन गुरु महल ना पाई है नाम ना प्राप्त हुए, ऐसा सतगुरु रोड़ लहो जिस पाइये सज सोए। असुर संगारे सुख बस है तुझ पावे सो होए, जिया सत कर जानिया, जिया सतगुरु कर जानिया, यो जिया सुख होए। यो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए, नानक एक जो सोए मूर्ति सब मिलावा हुए। श्री राग महला तीजा अमृत चोर बिख्या लोबाने, सेवा करके बिडानी अपना तन गवावे, अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अंदर सुख बेहानी मन मुख अंध न चेत ही, डू मोए बिन पानी ही। मान रे सदा पजो हर शरणाई, गुर का शब्द अंतर वत है ताहर बिसर ना आ जाई। रहाओ यो शरीर माया का पुतला, पिछो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मन भक्त गवाई। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा अति सुखारी, जो इच्छे सो फल पाए। जब सब पवित्र शरीरा हर हर मन बसाए, सदा आनंद रहे धन राति बिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुरु की शरणागति और तन के बल जाओ, तब सचे सच्ची बड़े आई, सहजे सच समाओ, नाक नदरी पाई है गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा मन मुख कर्म कवाव कमावने, तो दोहागनी सन सीगार, सहजे कंतन आवई निसन सोए खुआर। तिरका महल ना पावई ना दी से कर बार, पाई रे इक मन नाम त्याए, संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी, फिर राख्या पुरतार, मीठा बोल है निव चल है तेजे रवे पसार। शोभा बांसी सुहागणी जिन गुर का हित अपार, पूरे पाग सतगुरु मिले जा पागे का उदो होए, अंतरो दुख प्रम कटिए सुख परावद होए। गुर के पाने जो चला है दुख न पावे कोई, गुर के पाने बिच अमृत है सहजे पावे कोई, जिना प्राप्त तिन पिया मोहमै बिचू कोए। नानक गुरमुख नाम से आई है सच मिलावा होए, श्री राग महला तीजा जा फिर जाने अपना, तन मन अगे तेरे सुहागनी कर्म कमाव दिया, सही कर्म करे सहजी साज मिलावड़ा साज बढ़ाई दे। पाई रे गुर बिन भक्त ना होए, बिन गुर भक्त ना पाई है जी लोचे सब कोए। रहाओ लाख चौरासी पीर पाया कामन दूजे पाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन बिहाए। बिन साहब दी प्रेरणा पाई है बिरसा जन्म गवाए, हो करती जग फिरी ना तन सपे नाल, अंधी नाम ना चेतई सब भागी चमकाल। सतगुरु मिले तन पाया हर नाम हृदय समाल, नाम रते से निर्मले मुरके सहज सुभाए। मंथन रता रंग स्यो रसना रतन रसाए, नानक रंग ना उतर है जो हार सुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा गुरमुख कृपा करे भक्त की जय, बिन गुर भक्त ना होई आपे आ मिलाए भूजै, ता निर्मल होवै सोई। हर जियो
साचा साची बाणी सौद मिलावा हुए पाई रे पाकिन काहे जग आया पूरे गुरु की सेवना किनी बिरसा जन्म गवाया रहो आप ही जग जीवन सुख दाता आप ही भक्त मिलाई ये जंत ये क्या विचारी क्या को आख सुनाई गुरमुख आप दी वडाई आप ही जीव कराई देख पटा मोह लुभाना चलद्या नाल ना जाई सतगुरु सेव गुण दान पाया इसकी की मना पाई हर पग सखा मीन परम मेरा आते हुए सिखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत बचल है कर कृपा मन बसाई ध्यान शोभा सुरत से तब आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा धन जन्मी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया मृत्यु गया गुमान दार सेवान सत जन खड़े पायन गुण निदान मेरे मन गुरमुख गुरमुख त्याय हर सोए गुर का शब्द मन वसै तन मन निर्मल होए रहो कर कृपा कर आया आप ही मिल आए उस शब्दी साला ही है रंगे सह सुभाए सच्चे सच सुमाया बिन मिल रहे न बिछड़ जाए जो कुछ करना तो कर रहा अवर ना करना जाए चीरी बिछुने मेलिया न सतगुरु पन्न पाए आपे कार कराए थी अवर ना करना जाए मंथन रत्ता रंग से हो हमें सदबीकार रब है तो नाम निरंकार नानक आ मिलायन पूरे शब्द अपारो श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत न पाया जाए कसनी बदनी न पाई है और मैं भी चू जाए सतगुरु मिले सद पैर चह आपस मन आए भाई रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमा बने जन पदार्थ कोए रहो तिनी चाख्या तिनी साध पाया तिन चाके परम पुलाई अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए पिवसू परवान पया पूरे शब्द समाए आप ही देता पाई है और करना किछु न जाए जीवन बाले के हाथ दाग है गुरुद्वारे पाए यह किसोन सोते यह हुआ जेह कम कमाए जब सत संजम नाम है नावे निर्मल ना हुए पूरे पाग नाम मन बसै सद मिलावा हुए नानक सहजे ही रंग बरतदा हर गुण पावे सोए ती राग महला तीजा काया साधे खुद सब कर है पिछू हमें न जाए अति आत्म कर्म जी करे नाम न कभी पाए गुर के शब्द जीवित मरे हर नाम बदे मन आए सुन मन मेरे पाए सतगुरु शरणा गुरप्रसादी छुटिए बिक पा दिल शब्द गुर शरणा रहो त्रैगुण सबा सात है दूजा पाओ विकार पंडित पड़े बंधन मोह बाधा न पाइए तू न बूझे भी क्या प्यार सतगुरु मिले त्रिकुटी छुटे चौथे पद्मुख सुवार गुर से मार्ग पाई है चूके मोह गवार सतमरिता उजर है पाए मोह द्वार कुछ प्रसादी मिल रहा है सच नाम करतार ये मनुआ अस बल है छे न किसी को पाए दूजे पाए दुगुलाए रहा बहुत ही दे सजाए नारक नाम लगे सी उभरे हमें शब्द गवाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुरु पाई है हर नामो दे दृढ़ाए बिन गुर किने ना पायो बिरसा जन्म गवाए मन भू कर्म कमावने दरगाह मिली सजाए मन रे दूजा पाओ चुकाए अंत तेरे हर बसै हमें क्रोध निवारो
आंतर तेरे हर बसे गुरु सेवा सुख पाए।

जीवत मरे गुर कै शब्द विचार, धंधा धावत रह गए लागा साच प्यार, सच रते मुख उजले हित साचै दरबार, सत गुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस नान दान जेता करे दूजे।

गहीर जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए सच्चा शब्द ना पहचान्यो सुपना गया भाए सुनिए कर का पौना ज्यो आया त्यो जाए मन मुख जन्म बरता गया क्या मुंह देसी जाए सब कुछ आपे आप है हमें बिच कह ना जाए गुर के शब्द पछाणिए दुख हमें बिचो गवाए सतगुर सेवन अपना ओ तिन कै लागे पावे नानक।

मन मुख बूझ न पाए, जे सतगुरु मिले सो मिले, सच्चे शब्द समाए, मित्र कनेरे कर थकी, मेरा दुख काटे कोए, मिल प्रीतम दुख कटिया, शब्द मिलावा होए। सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, श्रेष्ठ देखे आप उपाए, सब एको इक वर्तदा, लख ना लख्या जाए, आपे प्रभु दे आल है, आपे दे बुझाए, गुरमति साध मन वस्या, सच रहे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लहर जाए, मन तन सीतल सब तिया।

त्रेपत हुए गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए आपे मेर मिलायदा फिर विछोड़ा ना होए नानक गुर सलाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए श्री राग महला तीजा सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए

जियो पिंड सब तिसका, जो तिस भावे सोए, गुर पूरे पूरा पया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यो चित लाया, से पूरे प्रदान, जिनको आप दयाल होए, तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हर नाम, मन मेरे को नाम ते आए सर्ब

असंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कालवड हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आए रहे संत मलेच मल पाए असंत निंदक करें पा नानक नीच कह जा वारे न जा जो तुम पावे सही परिकार

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सोचे सोच न हो गई।